ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमाम्यम।

ॐ तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी महात्मानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरिओम।

ये समझ लीजिए आपका वीडियो बंद चालू हो रहा है बार बार। ओम पृथ्वी मंद्रस्या मेरु चंदा कुरु देवता आसने विनियोगः ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी तम विष्णुना धृता तम चारे माम देवी पवित्रम गुरु चाशनम ओम आसन शुद्धे नमः पवित्रे नमः धर्मोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारा समर्पयामि स्वस्ति दीर्घं ओम स्वस्ति नो वृषभा स्वस्ति नो मूगा विषवेदाः स्वस्ति नस्तारको वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दातु। स्वामी जी कहाँ पे चल रहा है कुछ उसमें बता मित्र। अच्छा जी स्वामी जी हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा भद्रसूक्तं पठेत। हरि ओम ओं भद्रं कर्णेभिः शृण्वयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षतिराः तिरैरङ्गैस्त्रिषुवागुतसरोषेमहिदेवैत्रिञ्जदायुः कथमिन्नु शरदोऽन्ति देवाचितराजरसन्तनूनां वाचितरपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुगन्तोः अतिदृत्यौरतिदिरन्तक्षमतिद्रम्णाता सविता सौद्रः पिशवे देवादिदिः पञ्चजनादिर्जातमतिदृजनतिपम्नाद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः बृहस्पतयः शान्तिर्पिशवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्ति समा शान्तिरेति चतुर्विधः समीहतेजतोऽणुभवयन्तः गुरु प्रजाभ्योभयन्तः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु ॐ भूर्भुवः स्फटिकमहेश्वर देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे सिद्धि।

अपाग्रस्य ज्योरसस्तम्भो गृह्णामितमुभयां गृहीतोति सीन्द्रायित्वा जुट्टं गृह्णाम्येक तेजो निरिन्द्रायित्वा जुट्टतम्भा ॐ पूर्वासा सर्करास्नानतनुभयामि शुद्धोदकस्नानतनुभयामि अग्रे पञ्चामृतस्नानम् ॐ पञ्चानदीया सरस्वतीमभियन्ति स्रोतसः सरस्वती पञ्चदासो देशे भवत्सरित ओम पूर्वस्व स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः पंचाम स्नान सुरयामि पंचान स्नानान शुद्धो दग स्नान सुरयामि शुद्धान आजमनीयम जलम समर्पयामि अग्रे गंधोदिक स्नान ओम गंधर्व स्वा विश्वा वसो परिदिदात विश्वदिया ऋचे जजमानस्य परिदिर अग्नि रिडा ईडितः ओम पूर्वस्व द्वाद ओम पूर्वस्व स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः गंधोदिक स्नान सुरयामि गंधोदिक स्नानान पुनः शुद्धोदक स्नानम सर्वयामि शुद्धाम आजमनीयम जलम समर्पयामि अग्रे भस्मोदक स्नानम ओम त्रियायुगम जमदगने कशिक सिद्रायुगम मा जद्दे वेग त्रियायुगम तन्नो सिद्रायुगम मा ओम प्रसदि भस्मजान प्रसदि भस्मजानो जोनि वपश प्रतिवे मग्ने सगुद्रतिय मात्र विश्वन ज्योतिकमान पुनरासद हावम पूर्वास्व भस्मोदक स्नान सर्वयामि भस्मोदक स्नानान पुनः शुद्धोदक स्नान सर्वयामि शुद्धान आजमनीयम जलम समर्पयामि अग्रे पुष्पोदक स्नान ओम ओघदी पूर्वा जाता देवी व्यस्त्री युगम पूर्वा वनै नो भ्रूणा महगो शतम धामानि सप्त च ओम पूर्वस्व स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः पुष्पोदक स्नान सर्वयामि पुष्पोदक स्नानान नमः शुद्धोदक स्नान समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्प हस्त प्रक्षालनं परतः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्प समर्पयामि बिल्व दल पत्राणि समर्पयामि ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिने च परुतिने च नमः समर्पयामि ग्राणं कृत्वा समझी पुष्प सूंघ करके पीछे छोड़ना है फिर से नया पुष्प चढ़ाना है ग्राणं समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम अभिषेकार्थे पुनः नवीन गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि न्यासं कृत्वा ओम मनोज उद्रजुगदामास्य प्रियस्पत्र चैतन्य मंदानो द्वरिष्ठं जतिं सुमदात विश्वे देवासमादन्दा मोम प्रतिष्ठ प्रदियाय नमः अबोधिगणि समिदा जनानां प्रतिदिनं विवादि मुखा सम्मा जब्वा कृपजिगानां प्रपान मात्रदां चतुर्थे स्वाहा ओम मूर्तानन्दि वृद्धि मृद्विया वैश्वा नरमृदा जावद्गुणमा कविकुन्दमनाज नमः వందే దేవ మాపతిం సురగ్రం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగ భూషణం రుద్రం వందే పశువునామతిం వందే సూరజ సాంగవర్ణినయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం జవర్ధం వందే శివం శంకరం ఓం పూర్వస్వః స్ఫటిక మహేశ్వర దేవతాభ్యో నమః సర్వోపచారార్థే ప్రార్థనా ప్రకృతి నమస్కారాన్ సమర్పయామి ధారాపాత్ర పూజన ओम जत्रधारानभेदा लक्ष्मी वाहास्ति वसु गृणतु ब्राह्मण गुराजन् पारयामसि ओम पूर्वस्वा धारा करणम् प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि ओम प्रणम्य श्रीशादेवं गौरीभद्रं विनायकं भक्ताभासं नित्यमायुष्कामार्थ सिद्धेव्रतं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं ऋषमिङ्गाक्षं गजकुत्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकर्णमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णदाशनं नमो बालचन्द्रं च दशमंतो विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं दुजानं द्वादशैतो नामानि त्रिदन्तय्यपटेन्द्र नच विघ्नमिदं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी त्वदीय विद्यान्तनार्थी लभतेन्द्रं पुत्रार्थी त्वदीय पुत्रान् मोक्षार्थी त्वदीयं जपेत् कृणुति स्तोत्रं षड्विरार्थं सम्पत्रं सिद्धिं च लभतेन्द्र तुमसय अष्टभिः ब्राह्मणे वैशालकेतवाय समर्पये दत्त विद्यापतिर्वा गणेशस्य प्रसादित हरि ओम माम गणानांद्वा गणपति गुहवामय प्रियानांद्वा प्रियपति गुहवामय दीनांद्वानि गुहवामय सोम अहम जानकृतवान् तं जानकृतं मा गायते दृष्टि जगते रंचो पंक्त्यासा प्रियदृष्टि नाकुप सूचीपि सम्मेन्दुभा ఉదాహరణ
पशुस्तां गरीबाभ्य ब्राह्मणोस्तमुखमासीत बाहुराजन्यकृतः क्या करे तमें इस बात मृत्यु में दिनान कुछ कह रहे थे समझिया तमें इस बात मृत्यु में दिनान्याम्रजापतिशरभिगंधर्जायमानो सेनाधीरसागमिन्द्रासङ्क्रन्दनेनान्विखेण दक्षिणाजिद्यापुरोहितसोमादेवसेनानामभिपञ्चदीनां जयन्तीनां मृतोजन्तकरं इन्द्रस्य वृणो वरुण सराज्ञाद्यानां मरुदा कुशरतकर्मा महामनसमजीवानाङ्गो गोदेवानां तारण विश्वदर्शत ज्योति सुदर्जा विश्वमावासी रोजनम मातुर्ज देवतम तन्मय तो मध्या करतो अर्पित सुख संजवार जदी दक्तारि दहा सदस्ता द्रा दात्री बात तरु देव स्थिति मस्मय तन्मय दृश्य अवरुण सिया विजिक चे सूर जो रूपं करुण तेद्यो रूपस्थ अनंत वन्य दृजा कृष्ण वन्य तरिता समरंति वनमावति तुर्ज बड़ादि महामति महस्त तुम्हें बन सदिदा देव महामति प्रदुर महामति द्रा देव महामति मन्ना देव नाम दुर्जा पुरोहित विद्योतिराभ्यम
गृषंदा विजा कुशी ही जामे कुंग गृषंदा स्ते विपरकस्त वे शिवांग रे रंग रुमाय कुशी प्रकुंज गदा शिवे न जातु आग्र छा छा बदाम सिजदा न तब मिज गदक्ष मुको सुमे नाग सदा दियवो चतुर्थ प्रथमो दैव्यो वे गंगा इंद्र पांच जम भय इंद्र बाजु आदो अन्य राजी परा सुभा सौ स्तंभ्रो अरुण उदव रुदु मंगला जय जय नुदा विदो कृदा आदर्श वे का को हेडे म सौ जो वस्त्र दिन नील ग्रीव विदो बिलोयदा उदय नंगो पाद्र सन नद्र सन मुदा आद्य अर्थ जुर मडया दिन अनमोस्त नील ग्रीव आदर्श राग जमे डुके अधो जीव अनुवन दैव्यो ग्रन मा ब्रह्म च दन द्वार सु विराट नुर जम प्र जाशित स्थित का अपराधा भगव बाबा विजेंद्र नो प्रतिनो बिचल्यो बाण मा उदा ने सन से आके बाबा रसन गति जाते हेतर में नमस्ते बोधि तन उदय आत्मा विश्वत सुना परिभुजा परिधि तन मनो हेतर स्मार प्रणक विश्वदा दो जी दुस्वारे सुनि दे तुम ना आवति कर चुको दा राग ने मन मोशी मन आत्मा भवन सायुदा याना तदाय दुष्ण बाबे मदेन मो बाबे मदेन तन मने मानो महांत मानो भगव महांत मत मानुष मानव दीप द्रम मात्र मान प्रिया संपूर्ति का मानस तो मान मानो कुमार गानो मानो बीरंद्र बामिन बाबा महे ओम नमो हिरण्य भावे सेना ने दुजान मदेन मोहन मोर के प्योर के शब नाम दे मोहन मोशक पिंजरा यद्वि किम दरम दरम मोर के शब नाम चा नाम दे मोहन मूल जा बेन नाम दे मोहन मो भवसे ते जग नाम दे मोहन मो रुद्राय नक्षत्र नाम दे मोहन मा सुदाय हंदे बिना नाम दे मोहन मो रोहिताय स्तवदे क्षण नाम दे मोहन मो भवंदे वारि सिद्धा कुदी नाम दे मो मंत्र ने बाण जक्षण उच्चरि गोकाय कृतन देवति नाम दे मोहन महा कृष्णाय दया दावति नाम दे मोहन मा सायमान निवेद नाम दे नाम दे मोहन मो गंगणे गो तगुपास देना नाम दे मोहन मोहन निचरे रुचिराय अरण्य नाम दे मोहन मो पंच दीवर मुझे दिस दावि नाम दे मोहन मोहन गंगणे निगंगणाय को दिवस ग्राम दे मोहन माद्रिका भ्यो जीगा कृष्ण मुसना नाम दे नमस्ते मध्यो नक्तन दुर्ति गनंदा नाम दे नमः नमः मुसने गिणे गृजरा कुलुंजा नाम दे मोहन एकमत भ्योदन बाबिस मोहन मोहन मादन बानेभ्यः ब्रजनाने विष मोहन मा अन्नमाति सुदिश मोहन मोहन मो बीजर विष मोहन मोहन मा सब दिव्य जगत शोन मोहन मा सयाने व्यासे ने विष वो नमो नमस्क नमस्ते शब्द दा विष मोहन मोहन मा सब भव्य सब विष मोहन मोहन मो शब्द विष मोहन मोहन मा भव्य ने भव्य विविध अंत विष मोहन मोहन मा गणा अंतर को विष मोहन मोहन मो गणे भव्य गणपति विष मोहन मोहन मो ब्राते भव्य ब्रात विष मोहन मोहन मो कृत्य भव्य कृत्य विष मोहन मोहन मो रूपे भव्य विश्व रूपे विष मोहन मोहन मा हा देना भव्य देना विष मोहन मोहन मो रते भव्य रते विष मोहन मोहन मा द्रव्य संग्रहित विष मोहन मोहन मो महा भव्य रूपे विष मोहन मोहन मा हा नमस्ते क्षिप्रतिकार विष मोहन मा गुलाले भव्य कर्मार विष मोहन मोहन मो निगा देव्य पंजेश विष मोहन मोहन मास ध्वनि भ्योमृग विष मोहन मोहन महा सभ्य सभति विष मोहन मोहन मोबाइल रुद्राज महा शर्भा विष विष देश मोनी लिखवाई तिगंडाज महा कपट ने के राज माता द्राक्षाय सतधन मने जन मो गिरीशाय विद्या मे दुष्मा जे कुन मनु द्वाज बामना जे मोमरे जे बर की मुरा मे दुष्मा जे कोदि मदि नमो नमो रद्वाज बामना जे मोमरे यदे चब्बर की के सेतन मोरदा सवरदे जन मो गिरीज प्रतिभाज महा शिवी जा जिना मा शीघ्र दिव्य मूर्मना जा अदवन्याजन मोनादेय दिव्याय जा नमो ज्येष्ठाय गुरुष्ठाय महापुरुषाय जा परम प्रतिमाय जा भगवाचन मोज ज्ञान विद्या जन महापुरुषाय सर्वेंद्र जाय मोजाम्य दक्षेम जन महापुरुष लोक्याय वसन उर्वर जाय कल्याण मो बन्याय दक्षान महा श्रवाय च प्रतिश्रवाय नमः सुगणाय जा श्रुताय नमः सुराय जा उपेदने जन मो बिलमिने जग वचने जन मो ब्रह्मणे जन प्रभु दिन महा श्रुताय गण दुन व्याय जा अनन्या नमो दृष्णवे नमो दृष्णवे च परम रहान मोनि गंगणे जय कुतिमते नमस्ते ज्ञान कवि जाय दिन महा स्वायुदाय दसदन बने जान मा श्रुत्य लुत्य मा गाटे निव्यज मा गुल्य दस्यान मो नादियाय सब्बैशंदाज मा गुप्याज वट्यर मो बेके बुद्धिन मोर के जवर के आज मो वाद्याय रे एक माइन बास भाई बास तो भाई मा सोमाजर सोमाजर सोमाजर दाय नमः साम्राज्यार सिंह वेज पशुपते च मुंगरा भीमाज नमो ग्रेव दास दुरी वदन मोंत्रे जनिक्षेभ्यो हरिकेशभ्यो नमस्कार आय नमः शंभुवाज मो बाज मा शंकराज मंगराज मा शिवाज राजा मा भारत्याज वारज्याय जन्माव्रतना चौत्रना जमस्तीर्जय कुल्याज मासुक्याज बैन्याज मासिकत्याज विभाज नमक गु शिराय दक्षिणाज नमः कपड़दिन जो लोग सही मायरण न्याज प्रपत्याज मर्जय कोष्टाज नमस्तल्प्याज केशाज नमो रेदर्जाय मिल्प्याज मागाज अर्जन वागु से प्याज नमो लोप्याज लोप्याज मूर्प्याज मूर्प्याज महा परन्नाय परन्ना शतान मो ग्रमाणाय बग्ने दिन मागते आगत बिरो ने गुरुदेव तम गुरुजो नमो गिरे बियो दीवान अब्बु ग्रे बियो दीवान गुरुदेव बियो नमो जिनवत के बियो नमो गुरुदेव के बियो नमो निर्देव ब्यह जे वृक्षे कुज कुंजरा नील ग्रीव बिलोदा हा दे खग जनेवदन से जे भूदा नाम तपति उपजगाता कबदना दे जनेवदन नाम से जे बदाम पद रक्षा इले वृदा रुजदा हा ए खग जनेवदन बान से जे बदाम पद रक्षा इले वृदा रुदा दे जनेवदन नाम से जे दीर्घा नेवदन दरगास्ता निगंगण हा दे खग जनेवदन बान से जे ने को बिवति इंदि पात्र को तो जनन दे खग जनेवदन से जे जे
जय तावंत शबु या गुसुद्रावित स्त्रे ते खा गुद्रज देवदनवासी नमो सुरे भ्यो जे दिवी के नमो सुरे भ्यो जे दिवी जे कामरे के मेको दिव्यो दिस प्राचीर दस दक्षिणा दस प्रतिशत दसो दिस दूर द्वादे भ्यो नमो स्ते नो अंतु ते नो बड़ा यंतु ते चंद दिखमो दिशनो द्वेश में गान जंबे दमा हा नमो स्तु द्रे भ्यो जे इंदर क्षय जे काम बात की बात भ्यो दिस प्राचीर दस दक्षिणा दस प्रतिशत दसो दिशनो दूर द्वा तेभ्यो नमोस्तु ते नमंतु ते नमृयन्तु ते चन्द्रिक मोदिष्णो देश मे गाञ्जम्बे तद्मः नमोस्तुरेभ्यो देवृद्वाञ्जेका मन्नमिक्वा तेभ्यो दस दश दक्षिण दश प्रतीचर दशो दिशोर्ध्वा तेभ्यो नमोस्तु ते नमन्तु ते नमृयन्तु ते चन्द्रिक मोदिष्णो देश मे गाञ्जम्बे तद्मः हरिः ओं नावं वैको सोम प्रति तव मनस्तौ हृदय प्रजावन्दासजे मयि एकतिरुद्रभागः सहद्रामिक जातं जुग्द्वारित हरि रुद्रभागः कुस्ते पशुभद्रमधीपशपदे मन्त्रं मगम्ब శివ నామ శివతిమస్తేమానికృజాయ అగ్రహి హరి ఓం ఓం గురుశ్చ మే విశ్వాదశ్చునిశ్చాసాగ్ని గురదయ నాశాని గురదయాగ్రేణ పాశుపద్యం గ్రజన చల్లని తు సమజ మే యారు जी सर एक बार न्यास तो ये सातवां अध्याय पूरा करके करूं या जैसा आपका आदेश करें। जी ओम जी सर जी ओम मनो ज्योतिर जुगदा मात्र के प्रेग पद्र जति मंदानो वरिष्ठ जति गो समय धातु विश्व देवासी माता इंदा मूर्ति हृदय नमः ओ मृत्युंजय महादेव त्राय माम शरणागतम जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितं गर्भवंदनैः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभु शुद्धोदक स्नान ओम शुद्धबालः द्रव शुद्धबालो मणिबालस्ता अश्विनाः शेतः शेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अवलिप्ता रौद्रान भोरूपाः पार्जन्याः ओम महापोष्टामयो भूपस्थान ऊर्जितदातन महेरणाय तक्षते जो महा शिवतमोरस्य वाजयते हनः औषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमामोदक्षयाय जन्मद आभोजनयिताजुन पवित्रेस्तो वैष्णवियो सवितुर्महाप्रसव उत्पुना मृच्छद्रेण पवित्रेण पवित्रेण सुहृत्यरश्मिभिः तस्य देवपवित्रपदे पवित्रभूतस्य तत्कामः पुनीतच्छकेयं न देवस्य द्वा सवितुः परि भगवते स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि।

0: नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो
1: आपकी आवाज नहीं आ रही, वी कांट हियर हिम। सूर्य भगवान की जय।
2: रुको,
1: आवाज नहीं आ रही। बोलिए कुछ। वो पंडित जी
2: भोग के लिए पूछ रहा था कि भोग हो तो भोग लगा लेते हैं।
1: हाँ भोग लो पहले।
2: कुछ फ्रूट हो तो चढ़ा कर रखे। फिर ओम ज्वाला मालिने नमः। रीम रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात सुक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्रादवा यश्च प्राण समुगात अग्निर्जायत या देव सर्व भूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थानमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। ओम रीम रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वाला मालिने नमः। शिवजी की आरती बोले समझ। ओम जय शिव शंकर
1: स्वामी परिपूर्ण।

का नाशो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय, हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी महाराज की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय, अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवतार पुरी जी महाराज की जय, मात पिता सदगुरुदेव की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, नमक पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। ओम यानि कानि च पापानि जन्मानि च दानानि सर्वाणि यस्सन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय यत्पूजित मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्जनं पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मृत्युंजय महादेवत्राय मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं गर्भमंदनैः हस्ते जलमादाय ओम अतिपूर्वोच्चारिते मंगलागुणगण विशेषनिष्ठायां शुभपुण्यजितौ अच्युतगोत्रोत्पन्नस्य परमपूज्य स्वामीवर्यः सर्वेषां भक्तजनानां समुपार्श्वे अद्य श्रावणमहोत्सवे अन्तर्गते ब्रह्ममुहूर्ते शुभवेलायां स्फटिकमहेश्वर शिवपञ्चायतन देवताभ्यो सूक्ष्म अभिषेकम् अहं प्रीयतान्न मम तत्सत् श्री शांब शिवार्पणमस्तु। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। ओम शक्राय नमः। यय्यं चिन्तमदेकामन्तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पमान्।

स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीन्महिषागो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम, हैव अ ब्यूटिफुल लवली डे एंड सी यू एट 10:30। सत्संग इज एट 10:30। 10:30।

कृपा ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपनम सजते सर्वम सन्या दीपम सर्व सत्यम।

स्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्तं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मौक्तमूलम् ॐ शान्ति परब्रह्म।

0: ಭಕ್ತಂ ನಿತ್ಯದಾಯಂತೆ ಯೋನ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. अनंत ब्राह्मण की रचयिता सृष्टि की पालन करता घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन. आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत. धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि हम यहां इस आश्रम के अंदर सत्संग में आए. ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कार्य अच्छा कर्म यहां लेके आया है. ब्लेसेड सेल्फ ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड. The blessing is coming to you from Holy Bharat, beautiful, colorful Rajasthan, pink city, Jaipur ke Jodhpur?
1: Jaipur.
0: Welcome. Today's subject is the Nad Yoga. Vedas say Nad Rupa Parabrahma. Veda mein kaha gaya hai ki Nad Rupa Parabrahma. Agar Parabrahm Pramatma ko dekhna hai ki wo kaise hai, to unka aur koi shavroop nahi hai, keval Nad. The vibration, the resonance, Anant Brahmanda, Sastra Suryas, thousands and thousands of sun systems, endless stars and moons, all is created out of the one, the sound. Shunyakash, पूरे ब्रह्मांड की रचना जिसके अंदर हजारों लाखों लाखों सूर्य मंडल हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले अपने ज्ञान शास्त्रों के अंदर लिखा है बताया है. यहां तक कि एक योगी की चेतना 14 लोक 2100 ब्रह्मांड ये जो 7 लोक बताए गए हैं इनके परे 2100 सूर्य मंडल हैं वहां तक योगी की चेतना पहुंच सकती है. उसके आगे जाने के बाद में वो स्वयं जो है वो फिर वापस नहीं आएगा. 14 लोक 2100 ब्रह्मांड, द 14 डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड 2100 सन सिस्टम्स अबव दैट द कॉन्शियसनेस ऑफ द योगी कैन एक्सपांड एंड टिल दैट द अवेयरनेस ऑफ इन दैट कॉन्शियसनेस कैन रीच एंड कम बैक and give the knowledge to us. Modern science try to come to the moon, try to go to the Jupiter or the Mars, which is within our sun system. But how the yogis went there, That is the evidence of the Hindustan's Bharat ki Sanskriti aur Bharati Yogi Muni Rishi Muniyo ki Sakti aur Jnana. और वो जो कहा गया है कि एविडेंस विल नेवर डाई, कोशिश करते हैं लोग, हमारा धन चुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उनके पेट में पचता नहीं है. ऑल दिस दैट टाइम कॉल्ड शून्याकाश, अवॉइड dark blue space, nothing is inside, nothing. There, again, Shastra said, Veda said, ekoham bahusyami, I am one, and now I will multiply myself. Kya Bhagwan ki ichha hoti hai? क्या भगवान इच्छा करता है कि मैं एक हूं, अनेक में बनूंगा? वो कौन है कहने वाला? देखा किसी ने? सुना किसी ने? लेकिन ऋषि मुनियों का कहना है, वो जो है जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने कहा या जिसने कहा कि मैं एक अनेक में बनूंगा, वो एक जो है वो एकाकार निराकार निरंजन नित्य चिदानंद रूप स्वरूप संपूर्ण ब्राह्मण्ड की चेतना, अनंत की चेतना, हरि अनंत, अनंत हरि कथा. दैट टाइम इन एंडलेस देयर अवेक इज पूर्णा, ए वाइब्रेशन, ए रेजोनेंस, दैट्स कॉल्ड द साउंड. And that sound we call Om, Akar, Ukar, Makar. Through that resonance, whatever is visible in this universe, whatever is invisible but you can feel, in that all is created by that one Bindu, one Akar. Nad Bindu Kala. नाद बिंदु, उस बिंदु से शुरुआत होती है, वह बिंदु अभी तक है. जिस समय आप मां के गर्भ में प्रवेश करते हो, उसमें सबसे पहला एक बिंदु केंद्र बनता है, वो हमारी नाभि है, और उसी के पास में आंत बनने लगती है, फिर रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर दूसरे अवयव और अंग शरीर के जो है बनते हैं. लेकिन बिंदु तो वो है नाभ, और वो जो है मां का गर्भ जो है वो संपूर्ण ब्राह्मण है. मां की कोख जो है वो संपूर्ण आकाश तत्व है, और वो जीवात्मा जो है वो चैतन्य, उस परमात्मा का स्वरूप चैतन्य. तो जब कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, वो कमल ये है कि विष्णु जल के अंदर रहता है, और वो जल के अंदर वही चेतना जो कि मां की शक्ति है वो रक्षा करना. भगवान विष्णु हमारा करते हैं, क्या करते हैं? रक्षा. ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड विष्णु इज द प्रोटेक्टर एंड शिवा इज द लिबरेटर, नॉट अ डिस्ट्रैक्टर. But he destroys the negative. Shiva is not a destructor. तो वह जो मां के शरीर के अंदर जो गर्भ बढ़ता है वो ही कमल है, और वो ही कमल जो है जब जन्म होता है बच्चे का, अभी भी उसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, उस अनंत मां अंदर अनंत है. उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले भगवान मां है, मातृ देवो भव, वही कमल है, वही कमल बढ़ता है, और वही उसकी कई अलग से हमारे योग के अंदर वही ईडा पिंगला सुषुम्ना है, वही नाड़ी है, वही कमल खुलता है, ब्रह्मा वही ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा। उसी नाद का स्वरूप जो है वो नाद, वो रेजोनेंस, दैट साउंड इज स्टिल रेजोनेटिंग कॉन्स्टेंटली बियॉन्ड मैनी सन सिस्टम्स एंड इन आवर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। देयरफॉर वेदा सेड यथा ब्राह्मणे तथा पिंडे। जो ब्राह्मण के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर में नहीं है वो बाहर नहीं है। हर एक सेल्स हमारे बॉडी के जो है, हर एक अवयव हमारे शरीर के हैं, उसके अंदर में नाद है। वो सोनोग्राफी करते हैं ना साउंड के साथ में, हृदय की आवाज सुनाई देती है। एक मिनट में कितना लीटर हृदय खून फेंकता है? यहां डॉक्टर साहब बैठे कार्डियोलॉजिस्ट, उसने रॉन्ग मत बोलना। एक मिनट में 5 लीटर खून का दौड़ा करता कराता है हमारा ये हार्ट। ओ तो 24 घंटे में कितना होगा भाई? पड़ियोड़ा भाई बताओ, मैं तो पड़ियोड़ी को नहीं हूं। उस हार्ट का आपने कभी ध्यान रखा? कभी आपने हार्ट को कहा कि आप कैसे हो, आपको कैसा खाना चाहिए, मैं क्या खाऊं जिससे आप मजबूत और खुश रहो? हम हमारे जीवा के मुंह के स्वाद के कारण हमारे कोई शरीर के अवयवों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। कभी आपके हार्ट को कहा कि तुम एक दिन विश्राम कर लो? मामला पूरा। तो अरे उसको विश्राम के लिए नहीं तो उनकी थोड़ी सहायता तो कर लो। आपका सबसे अच्छा सेवक आपका जो है वो सेवक है हमारा हार्ट। चलो नाद, इसीलिए हमारे 4 वेदों के अंदर एक और 5वां वेद है जिसका क्या नाम है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद जो है नाद योग है, और उसके अंदर में जो है ये नाद हमारे शरीर में जो प्रकट हुई है मानव के जीवन में, मानव की बुद्धि के द्वारा और मानव योग साधना करके उसको पहचान सकता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। जब तक नहीं होता, नहीं तो नहीं होता है। एक छोटा दृष्टांत, देयर इज ए वन स्मॉल स्टोरी। गॉड हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। भगवान के बहुत सुंदर बाग था, बहुत अच्छा, और भगवान के वहां अच्छा निवास था, वहां भगवान रहते हैं। एवरी मॉर्निंग सुबह उठ करके भगवान अपने बगीचे में घूमने को जाते थे। अर्ली मॉर्निंग गॉड गेट अप एंड वॉक थ्रू द गार्डन एंड ही टचेज ईच एंड एवरी ब्लॉसम्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज एंड ऑल, जितने भी वनस्पति हैं भगवान उनके हाथ लगाते हैं, भगवान देखता है, भगवान चलते हैं, और जितने भी पौध हैं, जितने पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं, सभी भगवान को कहते हैं गॉड आई लव यू, गॉड आई लव, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु, हे प्रभु। और भगवान भी कहता है कि यस माई डियर आई लव यू, आई लव यू। भगवान भी हमारे से प्यार करते हैं। तो वहां एक बांस था, है भगवान के बगीचे में सभी है। सो देयर वॉज ए बंबू एंड बंबू वॉज इन सम कॉर्नर। तो बंबू भी दूर से कहता था बांस के, भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान आते कि हाँ माई डियर बंबू आई लव यू ऑल्सो वेरी मच। भगवान उस बांस को भी टच करते थे। फिर भी हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा है कि बांस उगा भूमि पर और दुखी हुई बंदराए, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। जब कहीं बांस उगता है तो पूरी वनस्पति दुखी हो जाती है, क्योंकि बांस हवा से आपस में घिंचेगा और आग होगी, सबको जला देगा। बांस के अंदर तीन अवगुण हैं। बांस चाहे अपने चंदन के पास हो, बांस चाहे गुलाब के फूलों के पास बीच में हो, वो सुगंध नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर अवगुण है। एक तो अवगुण वही है कि वो इतना कड़ा है कि उसके अंदर से कुछ पार नहीं होता है। वो कड़ापन यानी अपना अहंकार। ज्यो पद बढ़ता है तो मद भी बढ़ता है। ऐसे जो बड़ा हो गया, हमारे समाज में अगर कोई बड़ा अफसर बन गया और कोई हमारे समाज का कोई गरीब जाएगा कि साहब माने कोई नौकरी नहीं, बाद में फिर बात करेंगे, अरे भाई सहायता तो कर। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा इसके लिए, जो बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अरे समाज में कोई इतना बड़ा हो गया और गरीबों की हमारे समाज की सेवा नहीं करता है, अरे तू कब तक रहेगा, चार दिन री चांदनी आखिर अंधेरी रात। पद का मद तुम कहां तक लेके चलोगे। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सब दिन हो तन एक समान, लेकिन फिर वो तुरंत गुरु नानक साहब सेड कि एवरी डे इज ए गोल्डन डे, सभी दिन स्वर्ण दिन है। किसके लिए, संत के लिए। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता, रंग बनाने से नहीं होता है। संत की क्वालिटी हृदय के अंदर होती है, विचारों के अंदर होती है, दया के अंदर होती है। संत वो बैठा है और कोई आ गया तो कहेगा भाई रोटी खा के जाना, ऐसे मत जाना कि नहीं समय नहीं है, समय नहीं दीदा, ये तो प्रसाद ले जा खाते जाना बेटा, वो संत होता है। लोग आ गए अभी क्या करें, चलो आ गए, कैसे आए भाई, कोई काम है कि नहीं, बस जाओ। वो संत नहीं होता है, खिलाओ। जितना खिलाओगे उतना तुम्हारा तप बढ़ेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। तुलसी दास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर कर, अरे कि हाथ के ऊपर हाथ करो तुम देते जाओ। तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, नीचे कर मत करना। तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, ता दिन पर कर कर उस दिन मरण कर, है कि नहीं। मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए उनसे पहला वो मरा जिसके मुख से निकला ना आए। वो संत की पहचान होती है, चाहे ग्रस्त में भी हो तो भी देना होता है, दया होती है। और वो माताओं के अंदर जाता होती है। दो तीन आदमी एक साथ रह गए तो कोई आते तो देखते घर के अंदर कुछ जाने, भूकंप हुआ अभी, पेंट कहीं पड़ा, समोसा वो मोजा कहीं पड़ा है, वो पड़ा है, आएगा पानी पियोगे सा, अच्छा पानी लाता हूं, दूसरा कह रहा है। और जहां बहने हैं, माताएं हैं, घर की शुद्धता है, कोई भी मेहमान आता है जल पिलाएंगे कुछ लागे, बिना कहे ही पूछते नहीं पानी पियोगे, तो कहीं दारू पाए तो भाई सही बात है कि नहीं। नारायण नारायण नारायण। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। उसका कड़कापड़ा जो है वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है। दूसरा, मान लो किसी रूप से अगर सुगंध अंदर चली भी जाए तो अंदर में है पोल, पोल है कि नहीं, अब वो पोल में कहां रुकेगी वो सुगंध, वो तो अच्छा वो पोल है तो वो सुगंध आगे जाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर कपट की गांठ है, गांठ है कि नहीं, बांस में कपट की गांठ बीच में है पोल। और अगर उसको कहे तो तेरे अंदर तो पोल है, थोता चढ़ाने बाजे घना, भरा तो जबके नहीं जबके सोई आधा, घोड़ा तो भूके नहीं भूके सोई गधा। अगर इतना कह दिया तो उसको क्या होता है, गुस्सा आता है। तो जब वो बहां से अपनी जवानी पे आ जाता है तो हवा आती है तो रगड़ता है, घिसता है तो उसमें आग लग जाती है, सब वनस्पति को जला देगा। ऐसा हमारे समाज में, हमारे समाज के अंदर पैदा होए तो क्या करेंगे उसे। बास होगा भूमि पर दुखी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। और आप जैसे धर्मात्मा, आप जैसे संत आत्माएं, आप जैसे जिनके माता पिता की पूर्ण आशीर्वाद है, गुरुदेव की पूर्ण आशीर्वाद है, आप अभी यहां बैठे हो वो आपके पूर्वजों की कमाई है, अभी खा रहे हो वो पूर्वजों की कमाई है, अब तुम तुम्हारे बच्चों को क्या दोगे वो फिर तुम्हारी कमाई है। तो कहा कि चंदन उगा भूमि पर और खुशी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा कीमत देगा बढ़ाए। जहां चंदन उगने लगता है तो पूरे फॉरेस्ट उसकी रक्षा हो जाती है, यहां पेड़ नहीं काटना, यहां चंदन उग रहा है। तो ऐसे हम चंदन चाहते हैं हमारी समाज के अंदर, माता जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रहिए बांजरी मत गमाइए नूर। क्योंकि तीन सजावट देश को, हमारे इस भारतवर्ष की शोभा हमारी माताओं के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसकी है। तीन सजावट देश को शक्ति संत और शूर, और तीन लजावट देश को कपटी कायर और करूर। बात चल गई थी आज कहीं कि हमारे यहां के डॉक्टर अमेरिका जाते तो उनको फिर स्टडी करने लेनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका हमारे यहां के डॉक्टरों को कितने पैसे देकर के, फर्स्ट क्लास का टिकट देकर के 5 दिन के लिए भी बुलाते हैं। कितने डॉक्टर्स जाते हैं हमारे मुंबई से, अहमदाबाद से, राजस्थान से, वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां के डॉक्टर्स उनको बुलाते हैं। क्योंकि भारत ज्ञान है, भारत ज्योति है, भारत विश्व का गुरु है, हर एक फील्ड में, आध्यात्मिकता ही नहीं, हर एक जगह में। आविष्कार भारत में जो किया हुआ है, साहित्य कहीं होगा, अब जो है ये टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी ब्रेन जो है हमारे भारतीयों का, ऐसा ब्रेन कम ही बार मिलेगा। आज से 15 साल पहले जर्मनी ने वीजा फ्री कर दिया था और हमारे अच्छे से इंजीनियरों को वहां काम दे रहे कि आप आइए और हमारे लोगों को सिखाइए। यू नो दैट, आपको पता नहीं होगा। तो भगवान अपने बगीचे के अंदर जा रहे हैं और सभी पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं कि कैसे हो बच्चा, कैसे हो बेटी, कैसे ठीक हो। बांस कहता है कि भगवान मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे भी आपके बगीचे में रहने की जगह दीजिए। भगवान कहते कि ये बांस, तू मेरा बड़ा प्यारा है, तू मेरे बगीचे में हमेशा हमेशा रहेगा, मैं सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करता हूं, बोल। फिर भी कपटी के मन में तो कपट रहता ही है, डाउट कभी आउट नहीं होती है। एक दिन आया, भगवान सुबह उठ करके दोनों हाथ कमर के पीछे, बांस का कलेजा जो हार्ट बीट जो है वो 165 पे पहुंच गई। बांस कहता कि भगवान आज आपके हाथ, आपके हस्त कमल हमेशा आशीर्वाद के रूप में आता है, आज पीछे कमर पे क्यों रखे, पीठ पे जल के क्यों रखे हो। भगवान कहते हैं कि बास, आज मैं तेरे को कुछ दर्द पहुंचाऊंगा। बास रोने लगा, मैंने क्या गलती की प्रभु, मैंने क्या गलती की, क्यों क्या करोगे प्रभु, यहां से निकाल दोगे। कि नहीं नहीं, मेरे बगीचे में तेरा हमेशा हमेशा के लिए तेरी जगह है, लेकिन आज मैं तेरी भुजा काट दूंगा। मेरी भुजा। भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन इतना तो मुझे बता दी कि आप मेरी भुजा क्यों काट रहे हो। भगवान कहते कि हे बांस, मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता आपको? हां बेटा, जो कार्य मैं नहीं कर पाता हूं वो कार्य तुम कर पा सकते। वो कौन सा है भगवान? कि बेटा, मानव जाति का हृदय पत्थर की तरह हो गया है और उसको मक्खन की तरह इतना मुलायम करना है, वो मैं कैसे करूंगा? भगवान आप ही कर सकते हैं कि नहीं बांस, तुम ही कर सकते हो बेटा। तो मुझे और समझाइए, मैं कैसे करूंगा? मेरा हाथ काट दीजिए, आप दोनों ही काट दो, आप मैं आपके अधीन हूं। कि बेटा, मैं तेरे इस भुजा का एक सुंदर बांसुरी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्वयं मेरे प्राणों की आहुति दूंगा, लेकिन मेरे प्राणों की आहुति की जो ध्वनि निकलेगी वो ब्रह्मांड के अंदर जो कहा है नाद रूप पर ब्रह्म, वो प्रकट होगा और हर एक के हृदय के अंदर जो कठोरपन है वो मिट जाएगा और कोमल हृदय हो जाएगा। बोल सतगुरु देव की। तब से ये बांसुरी बनी भाई, ये भगवान की बांसुरी, ये भारत का असली वाद्य जो है हमारे संस्कृति का, इसीलिए भगवान के हाथ में बांसुरी रहती है, सरस्वती माँ के हाथ में ग्रंथ रहता है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं। काट दिया, बांसुरी बन गई। भगवान नित्य नियम से हमेशा उस बगीचे के में फिरते हैं। एक दिन फिर ऐसे हाथ रख के भगवान आ रहे थे, बांस ने सोचा कि आज और कुछ न कुछ दाल में काला है। भगवान आज और क्यों हाथ आप अपनी पीठ पे रख के आ रहे हो? कि बेटा, आज मैं तेरे को बहुत भयंकर दर्द पहुंचाऊंगा। मैंने क्या पाप किया? मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल आपके दरबार में, आपके बगीचे में खड़ा हूं और आपके दर्शन की लालसा है। हां बेटा, लेकिन फिर भी मैं आज तेरा जो मूल जो है, गोड़ जो है, उसको काट दूंगा। तो भगवान कहते हैं, ये तो अब माज कहता क्यों, क्या करोगे? कि तेरा जो गोड़ है वो

0: काट दूंगा।
1: अच्छा,
0: मुझे समझाइए काटने का कारण क्या है कि बेटा ऐसा है कि हिमालय की कंदराओं से जहां पानी बर्फ की चट्टाने पिघलती हैं, वो पानी जो आता है वो वहीं कहीं नीचे चला जाता है और इधर उत्तर की तरफ पूर्व दक्षिण की तरफ जहां भारत है अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है, जानवरों को मानव को पीने के लिए पानी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उससे? हाँ बेटा, ये तेरा इतना ज्यादा गोड़ है ना, उसको काट के मैं जहां पानी की धारा आती है वहां रखूंगा, तो एक चट्टान से दूसरी चट्टान के आगे रखूंगा तो पानी पूरा भारत की तरफ से आएगा, इसलिए तू ही है, दूसरा तो बिखर जाएगा। तो बांस को कितना ही पानी में रखो वो खराब नहीं होता है, तो वो प्राण रूपी जल हमें वापस पिलाता है। तो ये बांसुरी नाद योग, नाद रूप पर ब्रह्म, उस पर ब्रह्म का स्वरूप का, लेकिन हर एक की बात नहीं है। ये बांसुरी क्या छोटा सा ये लकड़ी है, छोटा सा डंडा है, मने दे तो मैं तो करूं मां टूट हो गई, हां बाबा जी बहुत बढ़िया बनाए रेवा दबे गण। लेकिन जब अच्छा कोई कलाकार उसको कृष्ण की तरह अपने होठों पे लगाता है तो बांसुरी भी खुश होती है, यहां अब भगवान मेरे से प्यार कर रहे हैं और अब भगवान का प्राण जो है मेरे अंदर प्राण संचार हो रहे हैं। हम सभी भगवान की बांसुरी हैं, हमारे अंदर जो प्राण संचार हो रहा है वो उसी पर ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ प्राण हमारे अंदर है। जब तक भगवान हमारे को बनाए रखेंगे हम बना रहेंगे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके मुख से बांसुरी हटा के ले जाए। नाद, नाद योग, 10 प्रकार की नाद होती है, 10 इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है और 10 इंद्रियों के परे जब नाद खुलती है उसको सोहम कहते हैं, आई एम दैट एंड दैट आई एम। उसी नाद को सुनने के बाद योगी की चित्त वृत्ति का निरोध होता है और फिर वो ध्यान में जाता है, नहीं तो वो बुगला होता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे मच्छी आई या मेंढक खा जाऊंगा। एक पैर पे वो खड़ा क्यों रहता है? एक पैर पे क्यों खड़ा है? दोनों पैर पे खड़ा रहना चाहिए, बताओ। एक पैर पे वो इसलिए खड़ा रहता है कि मच्छी आ गई तो दूसरा पैर पानी से निकाल के चलेगा तो मच्छी चली जाएगी, इसलिए रेडी रहता है कि कदम लगा के खा जाऊंगा। जीवों के अंदर भी तो कला तो है ना, ये कलाएं जो भगवान ने प्रकृति के साथ जोड़ी हैं अपना जीवन जीने के लिए। तो आज हमारे इस सत्संग के अंदर बहुत अच्छे हमारे कविराज आए हैं, काई ना भूल गयो, ओहो इंद्र दान रत्न, बोलो इंद्र को भी दान देने वाला है, वो रत्नों में भी रतन, वो रत्नु आ गए हमारे पास। अब मेरे रत्नु बहुत चिले, हाँ तो रत्नु के अंदर रत्न होता है और तो कहाँ रहेगा, रत्नों की खान में रत्न निकलता ना। सो आई वुड इंट्रोड्यूस यू टुडे, आई स्पोक अबाउट नाद योगा and the story many of you know, often I used to tell about the bamboo and the creation of the flute, meaning of the sound and the artist. The artist is a master. Karat karat abhyas pyare jadmat hot sujan, rasi ki avat javat silpar padat nishan. So practice makes perfect. Abhyasa abhyasa kaunte abhyasa. हे अर्जुन, हे कौंती के पुत्र, सन ऑफ द कौंती, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बट प्रैक्टिसिंग यू कैन डू मैनी मैनी ईयर्स, बट इफ इनसाइड यू डू नॉट हैव दया, योर प्रैक्टिस विल नॉट बी सक्सेसफुल। इसीलिए कहा है, गुरुदेव बिना कार्य न सरे, कोटि उपाय करे कोई चाहे न भव सिंधु तीरे, गुरुदेव बिना कारज नहीं सरे। तो वही बांसुरी, वही नाद जो कि पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्षों पहले, युग युगांतरों पहले ये नाद ब्राह्मण

0: से उत्पन्न हुई वो आज भी हमारे साथ में है, उसको ही पहचानना, भगवान को ही पहचानना है। तो हमारे इंद्रदान जो है वो आपको ही विल प्ले फॉर अस ए फ्लूट एंड दिस फ्लूट इज दैट वन विच वॉज मेड ओरिजिनली बाय मैनी मैनी युगास एगो। बोल श्रीदीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। ओम शांति शांति।
1: एक लाइन बोल दो,
0: बोलो 10 लाइन।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश
0: फ्लोर इज योर्स। उधर थोड़ा उठने मुंडो कर
2: दो वर्ल्ड
0: कैमरा की तरफ।
2: आई विश टू थैंक अ मिलियंस ऑफ टाइम्स टू स्वामी जी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल सो प्रोफाउंडली एनालाइजिंग the creation of the universe and linking it and bringing it ultimately to the flute which I wish to play before all of you. And I am very thankful to him for inviting me here to deliver this recital of the flute. Thank you, Swamiji.
0: Welcome.

0: सारंग सी राग थी
1: ये, कोई सारंग राग
0: क्या कोई गीत था?
1: सारंग राग थी और उस पे आधारित है गीत, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे श्री कृष्ण।
0: अच्छा, चारण राग है? चारण राग
1: नहीं, चारण नहीं साहब, सारंग।
0: अच्छा सारण,
1: सारंग
0: समझ गया आप, चारण हो इसलिए।
1: नहीं नहीं, चारण कोई राग।
0: अच्छा
1: सारंग राग।
0: एक और कोई राग बताओ। एक्सप्लेन द पीपल व्हाट यू आर सिंगिंग इन इंग्लिश सो दैट our international audience understands, because
1: it was based on Rag Sarang and it is based upon that I just played the flute about a bhajan about Lord Krishna, which says choti choti gaiya chote chote gwal, they are small cows and so are the cowherds gwale, छोटे से हमारे मदन गोपाल, सो लॉर्ड कृष्णा टू इज ए स्मॉल पर्सन। सिमिलरली सेज दैट घास खाए गैया, द काउज ग्रेज ग्रास, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, एंड माखन खाए हमारो मदन गोपाल।
0: नेक्स्ट राग कौन सी है, क्या गाओगे बताओ?
1: अब बाप जी जो निकल जाए उसके बाद में बताऊंगा। नहीं, पहले बताना बड़ा कठिन है, मैं चाहूं वो राग निकल ही नहीं पाती।
0: नहीं, आप कौन सी राग?
1: फिर भी ये भैरवी, भैरवी को टच करेगी, भैरवी। अब भजन कुछ नहीं है बहन जी, इतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, सही बात। हाँ ऐसे ही
0: चिराग, चलो
1: भैरवी को टच करो, कोई गीत नहीं ऐसे ही।
0: हाँ भैरू जी को बुलाओ आप, काले भैरू को दौड़ो।
1: और उसमें फिर आखिर में भैरवी आधारित है गीत, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, उस पे आ जाऊंगा फाइनली।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महेन्महेशा गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सद्गुरुदेव भगवान् की जय ॐ शलपुर्जि महादेव की जय द्वादिदेवेश्वर महादेव की जय श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदुधर्म सम्राट परमहंसम श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंसम श्री महेश्वरानंदपुरजी गुरुदेव
1: ओम जय।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री शिवानंद जी की जय, गुरुदेव की जय। द नेक्स्ट भजन विल बी हुआ गुरुदेव का दर्शन मिलाना हो तो ऐसा हो। I've met and I got the darshan of Gurudev. What a blessing this is. The highest thing that someone can get in life. Sridip Narayan Bhagwan ki jai.

0: ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ शान्तिः शांति शांति। श्रीदीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: श्री श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: मंत्र मंत्र इज ए मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। मंत्र इज ए गाइडलाइन एंड मंत्र इज द लीडर। मंत्र इज ए लाइट like a torch light to walk in the darkness. All the mantra, yantra, tantra, mudras, bandhas, pranayams, asanas, all these signs is blessing given to mankind for well-being of their physical, mental and spiritual being in order to